पर 80 दशक जमीन से मेरम चूड़न जी जगाए बिबल बुगाड़ सुई चुब्राओ ब्रेस कुस्ती